मिलाद ज़िला मूला के एक कस्बे का नाम है। अनतोलिया की सबसे बड़ी आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक है। आसार कदीमा की दुनिया ने बादशाह हेकातोमनोस के मकबरे की दरियाफ्त को सदी की दरियाफ्त करार दिया है। इस मकबरे को उस वक्त दरियाफ्त किया गया जब इस बात का तयन किया गया कि इस इलाके में गैर कानूनी खुदाई की गई थी। इसे कदीम दौर की सबसे अहम यादगार के तौर पर कबूल किया जाता है जो आज तक जिंदा है, क्योंकि ये मकबरा कदीम दुनिया के सात अजायबात में से एक हालिका नासोस मुजोलियम के साइज़ का है और ये इसे मुनफरद बनाता है। माहरीन का कहना है कि यह मकबरा एक आला सतही काम है जिसके डिज़ाइन दीवार की पेंटिंग्स और रिलीफ्स हैं। इन वजूहात की बिना पर हेकातोमनोस मकबरा और पनागाह यूनेस्को के आलमी सकाफती वरसे की आर्जी फहरिस्त में भी शामिल हैं। हेकातोमनोस मकबरा गोया इस जुमले की तस्दीक करता है जो अनातोलिया में ज़मीन के नीचे तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक कदरे अफसोसनाक कहानी कब्र का खोज लगाना है, ये जानते हुए कि कीमती सामान मरने वालों के साथ दफन होता है। ये लोग दौलतमंद होने के ख्वाबों से कब्रों को लौट लेते हैं। मिलास में हेकातोमनोस मज़ार पर भी सकाफत और तारीख के

दुश्मनों ने हमला किया है। 2400 साल पहले के आसार को वहशियाना जरबें मिलती हैं। मुनफरिद दीवारों और उभरे हुए सरकोफिक्स को शदीद नमी का सामना करना पड़ता है। माहिरीन ने इसे एक बहुत बड़ा मौका करार दिया है कि खजाने के शिकार करने वाले मजीद नुकसान पहुंचाने से पहले ही सरकोफिक्स को बचा लिया गया था।

हेकाटोमनस मकबरा उसके पनाहगाह के साथ 2400 साल पहले से आज तक पहुंचता है। सेंचुरी में मकबरे के बाहर एक काबिले जिक्र सुतून है जिसे ऑनर सुतून डेडिकेटेड टू मेंडरोस कहा जाता है। इस 8 मीटर ऊंचे ऑनर सुतून की चोटी पर मिलासा के मेनेंडरोस का मुजस्मा एक बार रखा गया था। आज वो सुतून एक ऐसी जगह है जहां सार्स बरसों से घोंसले बनाते आए हैं, इसीलिए मकामी लोगों ने इसका नाम उजुन उवा रखा है। मुहक्किकीन तवील अरसे से इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ये सुतून मज़ार का हिस्सा था। ताहम सुतून और मकबरे के दरमियान वाहिद ताल्लुक ये है कि इसे कब्र की तामीर के एक सदी बाद तदफीन के कमरे पर खड़ा किया गया था। दर हकीकत ये सुतून वहीं से शुरू होता है जहाँ से हेकाटोमनोस के मकबरे की दरियाफ्त की कहानी शुरू होती है, क्योंकि मालूम हुआ कि संगे मरमर के इस सुतून की बुनियाद पर गैर कानूनी खुदाई की गई थी और डाकू ने इस सुतून के फर्श में गढ़ा खोद कर तदफीन के हुजरे में दाखिल हुआ था। मकबरे से स्मगल किया गया गोल्डन क्राउन और पहाड़ी बकरे का मुजस्मा बैरून मुल्क से मिलने वाली दरियाफ्तों में शामिल है और उसे तुर्की वापस लाया गया है। ताहम डाकुओं ने इस मकबरे से और क्या खोद कर निकाला और कहाँ है, यह आज तक मालूम नहीं हो सका।

सामिन, आज हमने उज़ुन युवा हेकाटोमनोस किंग्स टॉम्प एंड सेंचुरी के बारे में बात की, जिसे हाली कारनासुस के मकबरे का पेश खेमा समझा जाता है, जो कदीम दुनिया के सात अजायब

सकते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम शोरतज़दा अफ्रीका और अहम इजादात पेश की जाएंगे, और अतातुर्क की याद नौजवानों और खेलों के त्यौहार की मुनासबत से एक खसूसी प्रोग्राम भी नशर होगा। आज आपके मेज़बान हैं सगीर अहमद।

0: के चेयरमैन जनरल डैनियल केन और अमरीकी फौजी कमांडरों को हिदायत की है कि वह फिलहाल इस तयशुदा फौजी ऑपरेशन को रोक दें। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने आज गजा जाने वाले ग्लोबल सुमूथ फ्लोटीला में शामिल 50 से जायद बहरी जहाजों में से तकरीबन 40 को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइली न्यूज़ वेबसाइट वाला ने एक नामालूम सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि फौज ने बहरी बेड़े में मौजूद तकरीबन 300 इंसानी हकूक के कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया है। वेबसाइट ने मजीद कहा कि इसराइली बहरिया ने अभी तक फ्लोटीला के तमाम जहाज़ों को नहीं रोका है और कई कश्तियां अब भी खुले समंदर में मौजूद हैं। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज़ बैनुल अक़वामी पानियों में इंसानी इमदाद ले जाने वाले इस बहरी बेड़े पर हमला किया था, जिसकी आलमी सतह पर शदीद मजम्मत की जा रही है। ये बहरी बेड़ा 54 कश्तियों के साथ जुमेरात को तुर्की के इलाके मारमरिस से रवाना हुआ था, जिसका मकसद 2007 से गजा पर आयद गैर कानूनी इसराइली मुहासरे को तोड़ने की एक नई कोशिश था। ये इस बहरी बेड़े के साथ पेश आने वाला पहला वाकया नहीं है। इससे कबल अप्रैल के आखिर में भी इसराइली फौज ने यूनानी जजीरे क्रीट के करीब बैनुल अक़वामी समंदर में फ्लोटीला की कश्तियों पर हमला किया था। उस वक्त उस काफिले में 39 ममालिक के 345 शुरका शामिल थे, जिनमें तुर्क शहर भी मौजूद थे। इस वक्त इसराइली अफवाज ने तकरीबन 175 कारकुनों को ले जाने वाली 21 कश्तियों को कब्जे में ले लिया है, जबकि बाकी जहाज यूनानी समंदरी हदूद की तरफ बढ़ गए थे। बाद में इसराइली अफवाज ने 2 कारकुनों के अलावा तमाम कारकुनों को बैनुल अक़वामी पानियों में दहा कर दिया था, जिन्हें इसराइल के अंदर हिरासती मराकज़ मुंतकिल किया गया और बाद में बेदखल कर दिया गया था। मकामी हुकाम के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल ने इंसानी इमदाद की रसाई को महदूद कर रखा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हमले जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में अब तक 877 फलस्तीनी हलाक और 2602 जख्मी हो चुके हैं।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: लुबनानी सिक्योरिटी ज़राए और सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने जुनूबी लुबनान में नए फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला ने इसराइली अफवाज के खिलाफ नए हमलों का ऐलान भी किया है। इस तरह अमरीकी हमायत याफ्ता जंग बंदी में तौसी के बावजूद लुबनान में जंग जारी है। लुबनान में 2 मार्च से जंग शुरू होने के बाद से अब तक 30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्की वजारत सेहत ने पीर को जारी होने वाली अपनी ताज़ा तरीन अमवात की रिपोर्ट में इन आदाद शुमार की तस्दीक की है। रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन ने कहा है कि मास्को और बेजिंग के दरमियान ताल्लुकात बेमिसाल सतह पर पहुंच चुके हैं। रूसी सरकारी खबर रसा एजेंसी तास की जानिब से शाया करदा बयानात के मुताबिक उन्होंने अपने दौरा चीन से कबल इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक की दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं है। बीजिंग के सफर से कबल आज जारी होने वाले एक वीडियो पैगाम में पुतिन ने कहा कि रूस और चीन सियासत, इक्तसादियात, दिफा और इंसानी हमदर्दी के तबादलों में तआवुन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। पुतिन ने कहा कि हमारी दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात बाहमी इफहाम व तफहीम और एतमाद और एक दूसरे के बुनियादी मफादात बशमूल खुद मुख्तारी और रियासी इत्तेहाद की हिमायत पर मबनी हैं। पुतिन ने बताया कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने एक दरीना और अच्छे दोस्त के तौर पर बयान किया। उन्होंने मजीद कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को गहरा करने के लिए बाकायदा आला सतही रबते इंतहाई अहम हैं। उनका कहना था कि 25 साल कबल अच्छे हमसाये और दोस्ताना तआवुन के माहदे पर दस्तखत करने के बाद से दोनों ममालिक ने एक हकीकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुक और जामे शराकत दारी कायम की है। पुतिन ने इक्तसादी तआवुन की भी तारीफ की और कहा कि दो तरफा तिजारत 200 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है और अब लेन देन तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुबल और युआन में किया जा रहा है। उन्होंने बाहमी वीज़ा फ्री निज़ाम की शुरुआत का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे सियाहत, कारोबारी सफ़र और अवामी सतह पर रवाबित को फ़रोग मिलेगा। पुतिन ने मजीद कहा कि मास्को चीन की तारीख और सकाफत की बहुत कदर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान इंसानी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहता है। सैन डियागो में एक इस्लामी मरकज में फायरिंग के नतीजे में 2 मुश्तबा हमला आवरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने कहा कि वो इस वाकये को मुमकिन नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर देख रहे हैं। हुकाम ने बताया कि दो नौजवान मुश्तबा अफराद